0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: संगीत संगीत
2: संगीत रुदि खुराक है
1: आत्मा दी आवाज है
2: कुदरत दा वरदान है
1: और प्यार दी जुबान है
2: जिंदगी जिंदगी
1: जिंदगी प्यार है
2: जिंदगी सांझ है खिमा है
1: जिंदगी एक रंगमंच भी है
2: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
3: कल्चर ऑफ पंजाब
2: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपने हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे, पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हाँ।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों न आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्त लव।

0: ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दे विल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटीरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अच्छा एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि how very confident and intelligent.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी गौर किया है, महसूस किया है, इनफैक्ट अल्फाज देने की कोशिश की है बारिश की बूंदों, बिजली और बादलों के उस सीन को। अच्छा बताएं कैसा लगता है खिड़की से बारिश की बूंदें देखना, अपने आप को उन बूंदों की नजर करना, जब बिजली जोर से कड़क कर अपने गुस्से का इजहार करती है और जवाब में बादल हंस कर उसे मनाता है। इन एहसास में जीना कैसा लगता है, बारिश के संग आंख मिचोली खेलना कैसा लगता है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अच्छा आपको बताऊं कि रिश्ते बनाने और तोड़ने में आपकी जुबान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे घर के पास एक लेडी रहती हैं जो हमेशा कहा करती थी कि जुबान शिरीं मुल्क गिरीं। एग्जैक्टली नहीं पता बट शायद इसका मतलब ये है कि अगर जुबान अच्छी हो तो मुल्क तक फतेह किया जा सकता है। यकीनन अगर आपका बिहेवियर एटीट्यूड और बात करते हुए अल्फाज अच्छे होंगे तो जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उनके साथ तो जस्टिस होगा ही, नए रिश्ते खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते जाएंगे।

छोटी छोटी बात पर हम लोग अक्सर अपसेट हो जाते हैं। यकीनन खुशी का मतलब सिर्फ स्माइल करना और हंसना नहीं है। खुशी दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जिसे एक्चुअली हम बाहरी दुनिया में तलाशते फिरते हैं और ये इतनी क्लेवर है कि छुप कर बैठी है हमारे मन के एक छोटे से कोने में। ज्यादा पैसा, बड़ा सा घर, लग्जूरियस कार, अ न्यू एंटी डिप्रेसेंट, प्लास्टिक सर्जरी, फ्लैटर स्टमक, ऑब्वियसली ऑल दीज टू कैन नॉट गारंटी हैप्पीनेस। फिर कहाँ ढूंढे इसे। चले खुशी की तलाश जारी रखते हुए पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

चाहे मैं मोहब्बत हूँ पर मेरा कोई एक रूप तो नहीं, फिर कैसे पहचानोगे मुझे? मैं बताऊँ, हथेली सामने रखना कि सब आंसू गिरे उसमें, जो रुक जाए होंठों पर समझ जाना कि वो हूँ मैं। कभी जो चांद को देखो तो तुम यूं मुस्कुरा देना, जो चल जाए हवा ठंडी तो आंखें बंद कर लेना, जो झोंका तेज हो सबसे समझ जाना कि वो हूँ मैं, जो ज्यादा याद आऊं मैं तो तुम रो देना जी भर के, अगर हिचकी कोई आए समझ जाना कि वो हूँ मैं, अगर तुम भूलना चाहो मुझे भुला भी देना, मगर जब सांस तुम लेना तो समझ जाना कि वो हूँ मैं।